जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ा तू गुर पिता तू है गुर माता तू गुर बंधक मेरा सखा सखा जो हमारी विद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम्हार जान हो आपे हम रुड़ते फिरते कोई बात ना पूछता गुर सतगुर संग कीरे हम थापे तन तन गुरु नानक जन केरा जित मिले।

गुरु अर्जुन विघ्न के नाशक, विघ्न के नाशक, श्री हर गोविंद शुभ सुमत प्रकाशक, श्री हर राय नमो कर जोरी, नमो कर जोरी, गुरु हर कृष्ण मनावो बहोरी,

दासन दास कहे दन नानक जेहा तू करही तेहा हम करी बखी। दासन दास कहे जन नानक

अकाल मूंगे चढ़ तख्ते बहें, रल में सर गुरमते मते हैं, सारे रल के गुरमते मतेंदे ने, मतेंदे मतलब मते मिथदे ने, भी ए गुरमते ने अज तो बाद उदो फिर गुरमता करके जिहड़े पंज सिंघ फैसला लैंदे ने, फिर एक सिख उठ के खलोंदा संगत विच भी जिहड़े गुरमते आपां पास कीते ने, गुरमते विचारे ने, ते इना दे विच अगर किसे नूं कोई इतराज है तो हुण खलो के गल कर सकदा है, कल गुरु की बदनामी होगी, बाहर नहीं कोई गल कर सकता। उदो गुरु के सिख जिन्हां नूं ना समझ लगे उठ के पुछ लैंदे सन, किसे दा शंका होवे, किसे दे किरदार ते कोई गल होवे, उदो बैठ के सारी गल विचार ली जांदी सी, पर फैसला एक हुंदा सी। जदों तक सिख इवें रहे उदों तक इहनूं नादर शाह भी कहिंदा सी वी इह दुनिया दे राजे होणगे, नादर कादर सोच पुन कहे नवाबे ऐस, जेकर है सिंह वैस्ट ही पाख तो हो तुम जैस, कुछ दिन को सिंह हो मार तो हो तुम आप ही आपन पैर कुठार, कुछ दिन को सिंह होएंगे भूपत मुल्क मजार, सारी दुनिया विच राजे होणगे। जदों तक सिखां दी इह अवस्था सी उदों तक काजी नूर मुहम्मद जिहड़ा नफरत दी भरी हुई कलम नाल लिखदा है, कुत्ते लिखदा सिखां नूं, लेकिन उह भी इक गल लिखदा कहण लग्गिया मैं बेइंसाफी कर रहा हां, इह कुत्ते नहीं इह तां शेर ने, इह मर्दानगी दे भरे होए ने, ते इक दिन वक्त आएगा अहमद शाह अबदाली तों बाद अगर कोई हाकम होणगे तो सिख होणगे, उह भी लिखदा। सिख भी उदों इस अवस्था दे मालिक सन, पर वक्त गुजरिया, जो अहमद शाह अबदाली ने आना छड्डिया, सिखां दा पंजाब दे विच अपना राज हो गया। वैसे 1765 तो ही जिहड़ा बहुता बोलबाला सिखां दा हो गया, 1767 तो प्रोपरली हो गया, उस तो बाद विच सिखां ने फिर अपने इलाके मान ले। आपां एडी दूर जा नहीं सकना क्योंकि मेरे कोल दिन बाकी बड़े थोड़े ने, मन विच भावना सी इन्हां 11 ही मिसलां दी, एक एक मिसल दी एक एक दिन विच या दो दो दिनां च आपां कथा करदे विचार कर दे, पर लेकिन नहीं कर पाऊंगी, फिर कदे वक्त मिले तुहाडे चरणों में हाजिर होवांगा, उसे गल नूं लैके फिर चलिए। आपां 11 मिसलां बनिया, सिर्फ ताजा करवाउण लई मैं एक बारी फिर बेनती करदे आं, जस आदू वालिया मिसल बनी सब तो पहली, इहदे नाल दूजी मिसल भंगियां दी बनी, डल्ले वाली मिसल बनी, इह तीजी मिसल है, चौथी मिसल फैजलपुरिया, वैसे जिहड़ियां मिसलां सब तो वध सत्कार मिले है वह दो मिसलां सन, एक आलूवालिया एक फैजलपुरिया। जिहड़ी पंजवी मिसल बनी उह सी कन्हैया, जिहड़ी छेवीं मिसल बनी उह सी करोड़ सिंधिया, एक करोड़ा सिंह दे नाम ते सी। सतवीं मिसल बनी नकईआं दी, अठवीं मिसल बनी निशान वालियां दी, नौवीं मिसल बनी संघणियां जां उन्हूं रामगढ़िया मिसल मगरों कहण लग पे, वह पहले शुरू हुई है संघणियां तो, नंद सिंह संघणियां सी, उस तो बाद उहदा वारस जस्सा सिंह बन गया रामगढ़िया, तो उहदे नाल शुरू हो गई रामगढ़िया। जिहड़ी दसवीं मिसल है वह है शुकर चक्किया, चढ़त सिंह शुकर चक्किया। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਖੜਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੈਮੂਰ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਹਾਨ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦਾ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਪੁਕਾਰਦਾ, ਇਹ ਉਹੀਓ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਨੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਰਮਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣੀ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਰਹੇ, ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਦਸਵੀਂ ਮਿਸਲ ਬਣੀ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਰਵੀਂ ਮਿਸਲ ਬਣੀ

0: एक पूरे जट ने भेजा सी दल बिदार जिहड़ा घोड़ा सी महाराज का पहला ए दूजे का नाम सी दल शिंगार ए दल बिदार एक है बेगी एक नीला सतगुरु के घोड़े बदलते रहे जदों चंगा घोड़ा आया सोहना इस प्रकार के नाल महाराज ने वह घोड़ा हुक्म किया कि लेके आओ
1: मिष्ट कृत को रातव करो अब लो पली पांत प्रित परो
0: हूं उन्होंने चंगिया निहारियां खवाइया चंगा घ्यो आदक जा देना या मिठा पा के देना ऐसिया निहारियां खवा के सोहनी पालना कीती होई सी
1: आज पाए कर दीन शिंगारो भूखन करन हमेला डारो
0: महाराज कहने अज पाई उहदे ते सोहनी काठी पाओ ते उहदे गले दे विच जिहड़ियां हमेलां हुंदियां ने गहना हुंदा गल दा सजा के चंगी तरह घोड़ा ले आओ
1: कंचन के को जेवर पहरावो पले तैयार करके ले आवो
0: सोने दे सोने गहने पाओ भले तरीके नाल साडा जिहड़ा घोड़ा है ए तैयार करके ले आओ
1: हुक्म मान सेवक किए तैयारा अलंकार कंचन शिंगारा
0: हुक्म मान के सेवक ने सोहने गहने पाए जिथे जिथे तक सजा सकते सी गुरां दा सुंदर घोड़ा सजाया
1: कलगी धरी सीस पर खरे लूल हमेल सजावन करे
0: कलगी सोहनी जिहड़ी सी उह सजाउणा कीती घोड़े उहदे वी कलगी लग जांदी सुंदर अते लूल हुंदे ने मोतियां दे छब्बे सो इस प्रकार दे नाल अरबी दा अखर होण करके मोतियां दे जिहड़े सोहणे छब्बे सी उह लाउणा कीते जां मोती लटकाउणा कीते हन
1: कबका दे कर लियायो तहां प्रभु बिराजे बैठे जा
0: सोहणी लगाम पा के घोड़े नूं उत्थे लै आया जिथे सतगुरु महाराज

0: महाराज ने देखा कि घोड़ा बड़ा सोहना है, बड़ा सुंदर है, सुडौल है, चंचल है, फुरतीला है। इस तरह घोड़े नूं देख के, शस्त्र नूं देख के, एक तैयार पर तैयार सिंह नूं देख के इस तरह सतगुरु जी बड़े खुश होंदे हन।
1: उठ करना निध तब चल आए, एक रकाब पग पंकज पाए।
0: कृपा दे के जाने सतगुरु जी उठ के उस वक्त आए ने, घोड़े दे एक रकाब दे विच अपना जो चरण है खब्बा चरण पा के घोड़े दे उपर चढ़न दी तैयारी विच हन।
1: ग्रीव के सगे है के जवे, उकसे उपर चढ़बे तवे।
0: ये जेड़े घोड़े दी गर्दन दे उपरले पासे वाल हुंदे ने, इन्हां नूं पकड़ के चढ़िया जांदा है। महाराज ने जदों उहदी गर्दन दे वाल पकड़े अते रकाब विच चरण पाया, जदों घोड़े दे उपर

0: महाराज जी ने उस वक्त तो पहला घोड़े नूं हौली हौली तोरिया, तोर के चंगी तरह फिर एकदम तेज घोड़े नूं भजाउणा, सूरज वल नूं मूंह करना, भजा भजा के हफा देना, इस तरह फिर घोड़ा ठीक हो जांदा है।
1: बहुत आए कर भले फंदायो, पुनजनी मंदर प्रब आयो।
0: घोड़े नूं भजा के फंदाया, चंगी तरह छालां भी मरवाईयां, वो घोड़े नूं भी पता लग जांदा कि बंदा तकड़ा जिहड़ा मेरे उत्ते कोई भी बैठा है कैसा है, किन्ना क जानकार है। वो भी समझ गया, क्यों गुरां दे जदों सुते सिद्धि सतगुरु जदों चरण पा के उत्ते बैठ गए तां घोड़े नूं भी पता लग गया कि मैनूं किड्डी महान सेवा मिली है। पहला मैं अपनी बड़ी मूर्खता कीती, अंदर पछताउंदा है। सतगुरु महाराज घोड़े नूं इस तरह घुमाउंदे होए आ के उतरे महिलां दे सामने, माता जी

0: अनेक प्रकार नाल तू खांदा रहा है।
1: सुन सतगुर तेज था अलायो सिर हिलाए घोड़ा फुरकायो।
0: सुन के सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने जिवें कहा सी घोड़े ने ना विच सिर हिलाया। नहीं महाराज मैं कोई इन्हां दे ओ नहीं करदा। चाहे तुसी कहो कि पिछले जन्म च इन्हां रोटियां खाधियां तो इन्हां दा आ खाधा सौ कहो, पर मैनू तां मेरे मालक दी आण पा दित्ती। मैं तां नहीं अगे वधदा क्योंकि उह कहता नीलिया तैनू तेरे मालक दी आण, दसो हुण मैं किवें लंघ सकदा। इस करके घोड़ा भी बड़ा सियाणा सी, उन्हें कहा ऐसी गल नहीं, मैं तुहाडा वचन नहीं मोड़दा पर मैं मालक दी आण भी नहीं जाण सकदा।
1: तब श्री प्रभ बैठे तिस थाना सबन सुनावत उच बखाना।
0: जदों सारे जने फिर हौली हौली पहुंच ही गए, सारे ने बेनतियां कीतियां, भाई दया सिंह उन्होंने बेनती की होर सिंघां ने महाराज माफी दे दो सातों गलती हो गई, खालसा तां हारदा जा रहा है। तां उत्थे बैठिया ने फिर वचन कीता
1: तो हेरा खालस गुर।

0: पंक्तियां कह के चुप कर गए।
1: कहते लगी समाध पद लगी गुप्त रस गुप।
0: यों कहने समाधि ला ली, गुर चरणा में समाधि लग गई ते लीन होके गुप्त रस लेता।
1: कल वरतारा पढ़ सुने कलयुगता का दास।
0: जेड़ा कलयुग दा वरतारा सुनेगा, ये साखी नु सुने, कलयुग दा दास बन जाएगा।
1: पाप भगे भगती जगे धन सिख की आस।
0: कहने पाप ओदे भज जाणगे, भगती ओदे हिरदे जागेगी, तन है गुरसिखां दी आस पूरी होवेगी, जेड़े गुरसिख होणगे। सो ऐसा महाराज ने वचन सुना दिता है। ये ढंग दे नाल गुरां ने खालसे नु सोहना सुनाया इतिहास। आउण वाला समा मुकदी गल मुकाईए बई, अमर छको दाड़ियां जेड़े कर दाड़ियां अपनियां रख लो भाई। महाराज कहिंदे आपे ही शूद्र बन जांदे ने, आपे ही लोग तंबाकू जा पीण लग जांदे ने, आपे मलेश बन जांदे ने। ऐसा भयानक समा है कलयुग दा। इको ही वचन कीता कि अमृत वेले उठ के बाणी पढ़ो, अमर छको गुरु वाले बनो, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं मन्नो। यही सोहना उपदेश हुंदा। बाकी इह सारियां चीज़ां तां विस्तार नाल तां आउंदियां ने कथा विच, अमृत वेले भी ताइयों विस्तार हुंदा कि हुण भी कि क्योंकि कलयुग के जीवां नूं शंके बहुते हुंदे ने, शंकियां दी निवृत्ति वास्ते इन्ना कुछ दसना पैंदा, नहीं तां सारे नालों सौखा काम महाराज एक कह देण भी उह वाहिगुरू वाहिगुरू करिया कर भाई। हुण जे दे बाबा दीप सिंह जी वर्गे हुण उहदा कहण सत बचन जी, उह वाहिगुरू वाहिगुरू करन लग जाणगे भाई किहने कहा, महाराज जी ने कहा। यह साडे वर्गे हुंदे क्यों कहीए, यह कहण दा की फायदा, फिर की बनेगा, गात्रा पा के की बनेगा। अहीं 50 प्रश्न करने अग्गों, इसे करके विस्थार करना पैंदा। तो महाराज कहने जे वैसे ही एक गल मान लो, सारिया गल्लां छड़ दियो पर नहीं मानते, फिर भी कहें आह गल क्यों, आ किवें इहदा की लाभ है। पर सतगुरु कहें जे सारे जने एक ही बचन मान लो, उस विच ही भला है। महाराज वो किहड़ा बचन